स्टेशन को पार्टी भाजपा का सभापति रवि लामिछाने और प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह बीच भेटवाट भएको छ। हिजो बिहान सभापति लामिछाने को निवास भवन निर्गत में विजेता बीच करीब 3 घंटा

0: विप्रवर्तिसी अनियन्नात पेस्कोई पशालन भैरने कुशान जराकतर लेंगी कधा योनिक अपसंखे के पहिचान पर पहिचे कलागी पहिं पजाईस्तन दर्शत
1: समुदाय को बारे में पशु राम जानकारी दूर छोरा भित्तिक ब्लू कलर छोरी भित्तिक

0: काम करिए प्रक्रिया गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता करती वैवाहिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वला रूप में द्वितीय यहाँ पूर्व स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पहल बताने ऐसी कौशल्य अस्पताल बासगढ़ी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल से देना सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 5 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर ऐसी प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जाँच गरिरहेछ
0: अथलेटिक नशा तथा न्यूरो सर्जरी हात जोड्ने तथा जनरल सर्जरी प्रसुति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा चेक जाँच गरा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे भिडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याप सेवा उपलब्ध भा प्यारालाइस शिशुको मुख बाँधिना नसा ताप बुझक हात कडा अनि चल्ना बिरामी थेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी विधि बसे

स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यालय बोर्ड के द्वारा चर्चित मतलब

बाबा एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश। स्वास्थ्य सेवा पर प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारे प्रतिबद्धता घटी, निर्विक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वत रूप में अति अभिलेख, यहाँ पूर्व स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक प्रदर्शन ऐसी कौशल्य अस्पताल पास करने संपर्क करना आर्थिक अनुरोध कर दी। अस्पताल ऐसी सेवा 24 घंटे

0: प्रत्येक नसा तथा न्यूरो सर्जरी, हार्ट जोड़ने तथा जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल सेवा, नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा जांच करा जाए।
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे, वीडियो एक्सरे, ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा। सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा। प्यारालाइसिसको मुभाग बिना नसा दाबको लक हाट द्वारा अन्य चलना बिरामी मुकाबला भिडियो थेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी विधि मसिन उपचार कैदी था।
0: नसा तब्दीले बिरामी हुकन के बिना अपरेशन फिजियो थेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी से सफल उपचार कर
1: 24 घंटा एम्बुलेंस को व्यवस्था कैदी था। असहाय नागरिक, एक पर महिला, अनाथ बाल बालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक हुकन पूर्ण सेवामा 10% छुट के व्यवस्था कैदी था। अस्पताल प्रणाली बासरी शाखा पाँच बासरी बर्दिया पुरान पेट्रोल पंप दक्षिण बाजार
0: संपर्क फोन नंबर 084-4-00-192 और 084-4-00-2

0: बाट भगवान स्वरूप चंद्र पानी का सतह पर खैना अथवा हम प्रयोग करना पानी का स्रोत धारा पुनः पानी दूषित से पानी चढ़े रोग का प्रकोप बढ़ना तर परमार्थन के शुद्ध बिना पानी निर्णय से धारा कुआ का पानी प्रिय प्रतिभाजी से ये समय में पानी चढ़े रोग से आसला पानी शुद्धिकरण संस्कृति मरना वो फिल्टर शरीर आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र प्रकोरा तीन चार सर्वस्मृत
1: Thank you.

0: そうしているそのお話の中に中国の問題を含めるあるいはそれが何のようにそのように今の方に政府を楽しみにするそれが日本にその中に行かないように何のようにあるとそちらの義務の中に何のようにあるそれが何のようにあるとあるいは何のようにあるとあるいは何のようにあるとあるいは何のようにあるとあるいは何のようにあるとあるいは何のようにあるとあるいは何のようにあるとあるいは何のようにあるとあるいは何のようにあるとあるいは何のようにあるとそのペッパースパインのどちらにもそのようなパニアでの調理者の場所には何もくれなぜそのチョコレートプランにもおよそ確かめてあげるのに大丈夫なようにしてみたらなぜそのアルトリーとしてどうせ申し上げましょう完全にこの辺にもちろん、会社の場所、実は会社の関係の税務署なら、会社の関係の税務署なら、関係の税務署に、税務署に、税務署に、税務署に、税務署に、税務署に、税務署に、税務署に、税務署に、税務署に、税務署に、税務署に、税務署に、税務署に、税務署に、税務署に、税務署に、税務署に、
1: स्थापित कर संगठन का डिजाइन सूचना पोर्टलम सूचना प्रणाली तथा मार्केटिंग में सुधार करना तैयारी विद्यालय को परिवार चार साल बजट में ये काम ये आई पर विदेशी जोड़ आपके मस्ता बेटा बजट विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन कायम करके लग तथा विकास आयोजना उन तरह का सरकार संचालन करना होगा स्पष्ट कर पूर्वाधार कार्य तैयार करना चाहते द्रवाट मंत्री खत्री प्रदेश सरकार का काम प्रभावकारी रूप में जनता समुदाय प्रदेश सरकार प्रति प्रमुख नकारात्मक धारणा हटाने लक्ष्य संघ 30 लाख रूपया से कम लागत में आयोजना प्रदेश सरकार का संचालन करना नीति निगम हो विकास आयोजना का नियमित तथा प्रभावकारी अनुगमन करना से वहां जानकारी दे रहा आप राष्ट्रीय समाचार का पाले बिंदु से
2: वहीं प्रधानमंत्री पहले के साथ प्रदेश में सुविधा संपन्न वाहन उपचार केन्द्रों स्थापना करो योजना का कार्य बढ़ाए निर्देशन निर्वाचन

0: खाना खाई, व्यायाम शब्द करी,
1: धूम्रपान नजिला नसेकी नरही, तर भनौ नियन्त्रण करी,
0: आज निर्णय कहिले जीवन हजुर निशा रोगको सेवा स्वस्थ जीवन अपनाई।

सर कुछ हाँ इसी सब में दवा आरोग्य कार्यक्रम का कार्यकारी प्रमुख प्रदीप कल्याण संपर्क गरी शुरू में तपाई हमें यस्तो सतर्कता अपनाउनु भन्नु हुँदा सरकार का तर्फबाट चाहिँ विपत्ति निम्ति आउने घटना क्षति कम गर्न के काम गरिरहेको छ भनेर सोधेका छौँ।